साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए

0: भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय हाल ही में इन घटनाओं में असामाजिक संलिप्तता की ओर इशारा है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार सदस्यों की सुरक्षा जारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अदालत का यह फैसला पीड़िता परिवार की बार बार जताई गई है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोती तोशिमित्सु के आने की संभावना है। ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और भारत में आज तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी हाथ लगातार है। साथ ही ये समाचार समाप्त हुआ।
2: आम्ही आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोत सकाळचे ठीक 6:05 झाले आहेत। प्रसारित आहोत मंगल प्रभात हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात श्रोते ऐकूयात वेदमूर्ती मोरेश्वर विनायक घैसास यांनी सादर केलेलं स्तोत्र सरस्वती सूक्त।

0: दसवीं के बाद क्या करेगा? आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: एनडीए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा सर।
0: कौन सी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करेगा?
2: आत्मा मलिक एनडीए एकेडमी सर।
0: बिल्कुल सही, आत्मा मलिक एनडीए एकेडमी, 11 साइंस एंड सीबीएसई बोर्ड, स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
3: विजिट आत्मा मलिक online.com।
4: श्रोत या रूपरेषेस ठीक 7 वाजता संत शिरोमणी मन्मथ स्वामी करत परमरस या ग्रंथातील निवडक ओवी परिचय आधारित कार्यक्रम मन्मथ आलासी होलोका। 7:10 प्रादेशिक बातमीपत्र आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्रावरून आपण ऐकू शकाल। 7:25 माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा प्रायोजित कार्यक्रम दिलखुलास आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून। 7:40 गीतांजली हा मराठी चित्रपटीचा कार्यक्रम। ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून। 8:30 मराठीतून राष्ट्रीय बातमीपत्र आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून। 8:40 भावधारा हा सुगम गीतांचा कार्यक्रम। ठीक 9 वाजता विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम।

नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, आत्म मालिक देश का नंबर वन आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस, कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए भेज

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि

0: पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: वेगान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे।

0: पीठ ने कहा कि जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57

0: अभियान करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयां, औषधियां, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है। किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जीव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जीव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें।

पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ। प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं। पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें। जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है, और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहनी खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चुचुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीच वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

0: बाबूला हा पॅरालिसिसचा अटॅक असावा. चल पप्पांना न्यूरॉन प्लस हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊया.
1: पॅरालिसिसच्या आजारात पहिले 5 तास खूप महत्वाचे असतात. म्हणूनच जर्मनी इथं उच्च शिक्षण घेतलेले वैद्यकीय तज्ञ डॉक्टर मुकुंद विधाने हे पूर्णपणे कार्यरत आहेत.
2: पॅरालिसिस रुग्णांकरिता स्पोक केअर 24 तास सीटी स्कॅन गरज पडल्यास ऑपरेशन थिएटर
1: न्यूरॉन प्लस हॉस्पिटल सारडी नाका अहमदनगर.
3: नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोची इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ. बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए भेज दे
1: आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम. काका गुडघा बदलावा लागला?
0: होईच नाही, जेवढा सांधा बदलायची गरज होती तेवढाच बदलला.
1: का बरं?
0: कारण त्यामुळे लवकर रिकव्हरी झाली आणि मांडी घालून बसता यायला लागलं मला. ऑपरेशन ऍडव्हान्स रोबोटिक पद्धतीने केलं बरं का?
1: पण कुठे?
0: मॅक केअर हॉस्पिटल सांधे रोपण विभाग सावेडी अहिल्यानगर इथं. आणि हो, या ऑपरेशन साठी सर्व शासकीय योजना आणि हेल्थ इन्शुरन्स सुद्धा तिथे आहे.
1: व्हॉट्सअप किंवा कॉल करा 98 23 852 852.
4: सेनेट दसवीं के बाद क्या करेगा? आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर. इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
5: एनडीए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा सर.
4: कौन सी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करेगा?
5: आत्मा मालिक एनडीए एकेडमी सर.
4: बिल्कुल सही, आत्मा मालिक एनडीए एकेडमी, एमएन साइंस एंड सीबीएसई बोर्ड, स्कॉलरशिप भी मिलेगी.
3: विजिट आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम. नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोची इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ. बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए भेज दे
6: आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम.
7: माहिती, ज्ञान आणि मनोरंजनाचा खजिना, आकाशवाणी बीड केंद्र. FM 102.9 MHz वर ऐकत रहा आपला आकाशवाणी केंद्र, बीड आकाशवाणी केंद्र.
3: नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ. बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए भेज दे
6: आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम.
4: सेनेट दसवीं के बाद क्या करेगा? आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर. इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
5: एनडीए कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा सर.
4: कौन सी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करेगा?
5: आत्मा मालिक एनडीए एकेडमी सर.
4: बिल्कुल सही, आत्मा मालिक एनडीए एकेडमी, एमएन साइंस एंड सीबीएसई बोर्ड, स्कॉलरशिप भी मिलेगी.
3: विजिट आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम. नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ. बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए भेज दे
6: आत्मा मालिक ऑनलाइन डॉट कॉम.
8: श्रोत्या, मिश्र सेनेच्या कार्यक्रमात ऐकूयात पंडित जितेंद्र अभिषेकी आणि सहकाऱ्यांच्या स्वरातील संत एकनाथ महाराजांची भक्तिरचना. संगीत नियोजन आहे पंडित जितेंद्र अभिषेकी आणि अण्णा जोशी यांचं.

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूँ मैं राजोल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। पर देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं? अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने। बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर है। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया, देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया, वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो साफ

मन कैसा होगा, नाग बुलाओ आ न सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया एक कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों, और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए।

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं, कि हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रही है कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारत, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है आप वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर एक किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो उससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ भुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। ताजा हो रहा है ये संदेश। गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ही आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है, कारण फलों के राजा

रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया।

0: सुबह आपका संदेश हमें मिल गया और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है। पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की उन्होंने बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत।

गर्मी के दिन सुहाने होते हैं। आम, पके कटहल, गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं। मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटी साइज के कबूतर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए, खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रही

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछाकर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती है, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तुम्हें बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता है तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितनी इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किन की है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द डाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना। Secretary P.C. Lyon.
0: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में

0: वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
1: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
2: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

पास सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

0: मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न

0: विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री

0: सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक

0: 22 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवनंतपुरम राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के

0: गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद

0: सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

बारिश फिल्म का यह गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ यह गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना। शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर के क्लासेस होती है वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका

0: रेशियो
1: जी,
0: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
1: जी।
0: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
1: जी।
0: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा बनता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है।
0: हाँ, जी,
1: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
0: केक बनाने के लिए दीदी, जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
1: जी,
0: चाहे कोई पतीला ले
1: जी,
0: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
1: जी,
0: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसमें हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
1: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
0: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
1: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
1: उसने
0: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भी भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
1: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
0: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
1: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले, मेरा बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हमें।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: सबको इसका, हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे। बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना
0: ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं?
1: हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से
0: जी,
1: सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
1: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं,
0: जी जी जी
1: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की सिकंजी है या रुआबजा है
0: जी
1: या दही की लस्सी है ये पीते हैं सब, ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराई मिलती है पीने
0: क्या बात है।
1: से।
0: और आम का पन्ना नहीं बनाती आप?
1: मैम आम का पन्ना नहीं बनाते हम, सिर्फ जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो
0: जी
1: आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
1: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी
1: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
0: जी
1: और मेरी सास का नाम सुमन है,
0: जी
1: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है,
0: जी जी
1: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित, सुमित और भाभी का नाम संत।

0: दोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है
1: जी? मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश चंद।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर
0: जी।
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं।

0: अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
1: क्या बात है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
0: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
1: क्या बात है।
0: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता, मराठी में लिखती हूँ जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
1: अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
0: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
1: जी
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी

पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज

आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूं कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आ जा की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमिया, एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझल सी हो जाती है, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती है। माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना।

उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।

0: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including

0: वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणाम अकरोत्। सर्वोच्च न्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमा क्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडो लाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्य प्रधानमंत्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपितु भविष्याभिमुखी अपि अस्ति इति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेशप्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्ति इति श्रीमोदी अवदत्।
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों के नए अवसर प्रदान करेंगे और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर

0: माझा आवार माझा शिवार कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य

0: बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी के सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: सुबह और शाम।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रही हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ताजमहल के लिए।

0: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा

इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिसरे सारे किस्से आँखों में घोल गया। अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आँखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां, मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दे भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी वो यादें तुम्हारी, करते हैं लाख कोशिश बिसरी नहीं बिसारे, पर तुम हो ही नहीं हमारे।

गम का दिया जला तो जल उठी ये रात, कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते, डसे काली नागिन सी ये रात, अब शब्दों में क्या समेटूं मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज करो एक वादा मेरे सामने तुम, दिया है गम हमें कोई बात नहीं, पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हमनवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय

0: में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
4: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मेरिट